छिटके से छिटे गुरु बाबे छिटके से छिटे गुर अंगद की से कुआरे गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हठ के ना विचारे गुर चौथी पीढ़ी चिकिया गुर चौथी पीढ़ी चिकिया जन निंद को दुष्ट सब तारिया जहां निंदक दुष्ट सरकार तारिया जहान लहया अहिमा।

हमारी जेहवा एक ब्रह्म हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जपे हर तुम बड अगम अथाह।

बटी हूँ बता अदार तेरा मर्दबा, बटी हूँ बता अदार तेरा मर्दबा। निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा, सुचो सूचा सुचो सूचा, सुचो सूचा सुचो सूचा, अंत न अंता सदा दे अंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा, ऊंचो ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रभ ते उठान, ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रभ ते उठान, तेरो थान तेरा थान सुहारा रूप सुहारा, तेरे भक्त सोहे दरबारे, तेरा थान सुहावा तेरा थान सुहावा, अर्थ सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया तेरा थान सुहावा, हर जपे हर मंदिर साजिया, हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावे राम, हर मंदिर साजिया निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, हम अपराधी तुम बचाते, जिस पापी को मिले ना कोई, जिस पापी को मिले ना कोई, शरण आवे दान।

0: जन नानक को हर बख्श ले हो, जन नानक को हर बख्श ले हो।
1: हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जबे आनिया हर तुम मत अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पाहा, सत संगत हर मेल प्रभु हम पापी संग तरा।
0: जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुत्ते मेल मिला,
1: हर कृपा कर सुन।

0: सुनेंदी सुनेंदी बहन दी हर किरमा
1: हम पापी किरम तरा पापी किरम तरा हम पापी किरम तरा।

अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूर नहीं पायो, भिन्न भिन्न सब हो कर जाना, एक रूप किन हो पहचाना, जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, बिन समझे सिद्ध हाथ ना नानक अंगद को बप धरा, धर्म प्रचुर इह जग मो करा, अमरदास पुन नाम कहायो, जन दीपक ते दीप जगायो, जग वरदान सवा वो आवा, रामदास तम गुरु बिचे पूर्व देवड़ा, किसती मस्त किसे घर आवे, बैठा सोधी पातशाह, रामदास सतगुरु जंको मुन ध्यान धरे, फिरत सकल जग कबहू को पावे, आत्म प्रकाश को वेद बाणी सहत ब्रंत जस गावे, जंको शिव मन कहना तजात कबिलाश को, जांको जोगी जनी सिद्ध साधक अनेक तप, जटाजूट पेख किए फिर उदास को, सो तिन सतगुर सुख भाए।

पूरे सतगुरु जो पड़ताल है जिसनु पड़ताल गुरु मातंद्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नु बदल के गायन करना जिवे हुण पहला जो रहाओ है वो ध्रुपद ताल च आया है हुण ताल बदल गया इस नु असीं दीप चंदी कहने हैं 14 सुर मात्र का ताल है ताल बदल गया है इस नु पड़ताल कहांगे और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लाओ।

नक्षत्र वीणा का स्वर है दीन, बिरना जो है ये सितार का स्वर है, तिरना तिरना सितार में वजदा, और दीन जड़ा है वचित्र वीणा में वजदा, ये साजा के दर्शन कराए ने।

स्वरूप पवन गुरु पाणी पिता माता धर्म महत दिवस रात को दाई दया खेले करमी आपको अपनी सारे जपो जिन्नी नाम नानक।

गुरती जी पीढ़ी विचारिया क्या हठ के ना विचारे गुर चौथी पीढ़ी चिकिया गुर चौथी पीढ़ी चिकिया जिन निंदक दुष्ट सब तारिया जहान निंदक दुष्ट सब तारे तारिया जहान लहया अभिमान।

हमारी जेहबा एक ब्रह्म हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जपे आनिया हर तुम बड अगम अथाह।

सुचो सुचा सुचो सुचा अंत न अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊंचो ऊंचा ऊंचो ऊंचा ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ तेरो स्थान ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ तेरो स्थान तेरो थान तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भक्त सोहे दरबारे तेरा थान सुहावा अर्त सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया तेरा थान सुहावा हर जपे हर मंदिर साजिया हर मंदर साजिया संत भगत गुण गावे हर मंदर साजिया निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते हमें अपराधी तुम बचाते किस पापी को मिले न कोई शरण आवे निर्मल।

वड्डी हूँ बड़ा अपार तेरा मर्तबा, वड्डी हूँ बड़ा अपार तेरा मर्तबा। निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा, सुचो सुचो।

0: फिर इंस्पिरेशन बख्शो सत्संग चारो वाहिगुरु जी का
1: खालसा वाहिगुरु जी की फतह।
0: ये बंद बोल बजाया पर मैं भी बेनती कर दें एक बार फिर ये बजा के ताकि कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। मैं वैसे आ गया मंगी सी पे तो मार रहे हैं जो होर चपता लगा लेने होर कुछ गा लेने कहते नहीं। इस तरह एक बार ये चक्कर बंद बोलता तो उस तो बाद फिर दौड़ जी खुले बोलने वाली होंगी वो चले शब्द है जी।

0: जिना दिसंदियां दुर्मत वंजे मित्र असाड़े से ओठने दी जाग सवाया
1: रे। इस मन को समझाए पाई रे, इस मन को समझाए ए मन आल

के लोग बसेंगे तेई रहनी रहे सोई दिल मेरा। ओ साहिब मैं उसका तेरा। रहत बिना ने सिंह कहावे रहत बिना दर चोटा खावे रहत बिना तरह।

सब मर्यादा पूरी हो गई। हुण तक महाराज गुरु बने रहे ते हुण आप जी दी वारी सिख बनन दी सी। आप बड़ी निम्रता नाल बोले, हे अकाल पुरख दे खालसा जीओ, तुसा सारी दुनिया नू अमृत दी दात बख्शनी है। सब तो पहला दास नू भी अमृत दी दात बख्श के गोविंद राय तो गोविंद सिंह बना लवो। भाई दया सिंह जी ने कहा, महाराज अमृत लेना है ता इस दा मुल भी देना पवेगा। असा सिर दे के अमृत प्राप्त कीता है, दसो आप इस बदले की दोगे। हजूर ने सिर चुका के कहा, प्यारे भाई दया सिंह जी, जे सिखा ने अमृत बदले सिर दिता है ता सिखा दा गुरु इस बदले सरबंस देवेगा।

सहन शक्ति जिस विच ए वस्तुआं आ गईयां, जिस विच ए ताकत आ गई, ओ दुनिया तो ही विलक्षण है, ओदी महिमा अपरंपार।

हंस हंस के इतने तसीहे ता बर्दाश्त कर ले। जालम ने बहुत चाया कि किवें गुरु अर्जन दे अंदर क्रोध दी अग्नि भड़क उठे, पर उन्हां नूं की पता सी

चारे पासे ये खबर फैल गई। चंदू जिसनू समय दी हकूमत दे बादशाह ने गुरु अर्जन देव पातशाह नू तसीहे दे दे के शहीद करन दा इशारा मिल चुकया सी। ओ चंदू अपने वल्लों उसने कोई कसर बाकी नहीं छड़ी। प्रभु परमात्मा दा हौ भुल गया, अपना आप भुल गया, सिर्फ एक तशद्दद करना ही उसके सामने। कई तो यह भी कहते ने कि उसने बदला लिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी के साहबजादे गुरु हरगोबिंद साहब जी जदों चंदू दे भेजे हुए दूतां ने रिश्ता कर दिता और आके दसिया कि गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे सहजादे साहिबजादे हरगोबिंद साहिब पातशाह उन्हां नूं रिश्ता दे आए हां, तां हंकार विच हौमे विच मतिया होया ए चंदू, क्योंकि सरकारे दरबारे ए नौकरी करदा सी, इनू बड़ा चंगा दीवान दा रुतबा हासिल सी। हंकार विच बोलिया, तुसी चुवारे दी इट मोरी नू ला आए हो, पाओ अपने आप नू उसने बहुत वड्डा दसिया ते गुरु घर नू एक बहुत नीवा दर्शाया, जिसनू सुन के कहंदे ने संगतां ने बड़ा रोस कीता और संगत ने आखिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी हो, आप जी ने यह रिश्ता नहीं लैना, वापस कर दियो, मोड़ दियो रिश्ता। ते संगत दा हुक्म मन के गुरु पंचम पातशाह जी ने यह रिश्ता मोड़ दिता। अज चंदू नू ए वेला हथ आ गया कि समय दी हकूमत ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू गिरफ्तार करके चंदू दे हवाले कर दिता और चंदू ने अपना बदला लिया। ऐसी एक गाथा आउंदी है, पर असलियत यह है कि हकूमत नहीं सी चाहती सच दी आवाज बुलंद होवे, हकूमत नहीं सी चाहती कि लोग सच दी आवाज नू सुनन ते उस सच दे उत्ते चलन, क्योंकि सच उत्ते जे प्रजा चल पई ते बादशाह नू फिर हकूमत करनी बड़ी औखी हो जाती है। उन्हें तौज़ के जहांगीर विच स्पष्ट लिखिया है कि मैं चाहुंदा हां ए जो झूठ दी दुकान गुरु अर्जन देव चला रहे ने गुरु नानक दे पंजवें वारस, जिस दे उत्ते कुछ हिंदू और कुछ सिरफुरे मुसलमान भी ओदा उपदेश सुनन वास्ते जांदे ने, मैं चाहुंदा हां कि ए दुकान बंद कर दित्ती जावे, जिस तों स्पष्ट नजर आउंदा है कि समय दी हकूमत नहीं सी चाहुंदी कि गुरु अर्जन दे रूप विच सच दी आवाज लोकां दे कन्नां तक पहुंचे, उह सच दी आवाज नूं बंद करना चाहुंदा सी और इस दा इल्जाम भी दूजियां दे सिर ते मढ़ना चाहुंदा सी। चंदू दे हवाले करके आप ओ कश्मीर वल चला गया। चंदू ने ईरखावश होके ए जुल्म करने शुरू कीते, चाहुंदा सी कि किवें गुरु अर्जन दे अंदर क्रोध दी अगन भड़क उठे, इहदा सिदक डोल जाए, पर धन गुरु अर्जन देव पातशाह शांति दे पुंज जिन्हां ने अपना पवित्र शरीर ते बलिदान दे दिता पर सिदक नहीं हारिया, शहीदी महल दी नीह रखण लगिया, हजूर ने सब तो पहला अपना शरीर एदे विच लाया, ओदे उत्ते ते शहीदी महल दी उसारी होई। आप उस अकाल पुरख दे भाणे नूं मनन दा संदेश

बैठ के शहीदी दिती है। एक विद्वान ने बड़ा सुंदर लिखा है, शहादत के हर कतरा खून में छुपा इमा होता है, जुल्म जिसमें डूबे वही सैलाबे तूफान होता है। शहीदों की कतलगाह में कब बेहतर है काबा, तो हदा भी शहीद खाक पे कुर्बान होता है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह शहीदी के संबंध में असी सारे उन्होंने श्रद्धांजलि उन्हों की याद में सारे ने जुड़ना है, तो कीर्तन के नाल जुड़ना है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने यह खजाना सानू जो बाणी का बख्शिश किया है, इस बाणी के खजाने नाल धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने महान कृपा की है कि सतगुरां ने पहला राग लिखा है फिर शब्द है, तो सतगुर की अपार बख्शिश हुई है कि यह तुखारी राग सतगुरु पातशाह जी ने कृपा की तुखारी दे विच। तो आओ यह तुखारी राग धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने रागों में बाणी उच्चारण की है। 31 राग सानू बख्शिश किए हैं, श्री राग माज गौड़ी आशा संघ भई बौरी गुजरी गंधारी ते बिहागड़ा सुहायो है, वडहांस सोरठ तनासरी जैतसरी टोडी ते बैराड़ी तलंग सूही सायो है, बिलावल गौंड रामकली नट अते माली गौड़ा मारू ते तुखारी कैदारा पैरों पायो है, बसंत सारंग मलार कानड़ा कल्याण प्रभाती ते बेपास जय जयवंती गुण गायो है। ਇਹ 31 ਰਾਗ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੋ ਆਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਜਤ ਬਸੰਤ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਨ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪਾਵਨ ਰਾਗ।

साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं हिंद दी चादर क्यों आखिया गया। इस लई उन्हां नूं हिंद दी चादर आखिया जांदा है। तेग बहादुर साहिब पातशाह ने उस वक्त अपनी कुर्बानी दिती जिस वक्त के इस हिंदुस्तान नूं बचान वाला कोई भी नहीं सी। उस वक्त गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह ने उन्हां मजलूमां दी बांह फड़ी ते हिंद दी चादर कवाया। अला यार खां जोगी ने बड़ा सुंदर करके लिखिया है।

0: कहीं धर्म की टूट जाए न डाली।
1: पंडिता ने आके बेनती की थी कि गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह आप धर्म दे बाग दे माली। उस वक्त बाग केड़ा सी? समुचा सारा हिंदुस्तान ते माली गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕੈਸੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ
0: ਕਿ ਹੈ ਧਰਮ ਕੇ ਬਾਗ ਕੇ ਆਪ ਮਾਲੀ ਕਾਹੀ ਧਰਮ ਕੀ ਟੂਟ।

गला खुद कटाने को बस आप ही है। दसम पिता दी ए गल सुन के गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह ने अपनी कुर्बानी दिती ते फिर क्या गे ए सारे हिंदुस्तान वास्ते साहबा ने अपनी कुर्बानी दिती। तिलक जंजू राखा प्रवतांका कीनो बड़ो कलू में साका ते फिर बड़ा सुंदर करके लिखिया गया है।

तेरी तन दौलत संपदा कौन सांभेगा। बाबा जी ने आख्या भी पलिया पलाया पुत्र तेनू दे दिए। इना ने आख्या महाराज जिवें आप नू भावे। बाबा जी ने उस जोड़े नू बुलाया ते नान हुक्म कीता कि हर वेले ए पंक्ति पढ़ दे।

दे विच आके खूंडा खड़का के आख्या भी कौन है बोलदा क्यों नहीं ता इसने आख्या मैनू नहीं जान दे इस जुग दा राजा मैं हां कल जुग ते बाबा जी ने आख्या वही असी ता दुनिया छड़ी घर बार त्यागया

निरंकार दे करो बख्शियां हुईया रूहां, जो संसार विच आके ए चेता कराउंदियां ने कि ए जीव तू निरंकार नू क्यों विसारे है।

ने काही रूहानू बाबा जी ने तन गुरु नानक सचे पातशाह दे चरणा नाल लाया। बाबा जी दे दर्शन ही ऐसे सन कि जो कोई भी करदा सी नाम जपन वालियां दे दर्शन ते फिर आप ही प्यार नाल मुख आखदा सी सतनाम श्री वाहिगुरु, क्योंकि नाम जपण वालियां दे दर्शन वडभागियां नूं हुंदे ने। हजूर बाणी च कहने ने एह निशानी साधकी जिस भेटत तरी, ए महापुरख दी निशानी है जिस नूं मिलदिया ही अकाल पुरख चेते आ जावे। क्योंकि जेड़े नाम जपण वाले हुंदे ने इन्हें दे रोम रोम विच वाहिगुरु वसिया हुंदा। बाबा जी ने कठोर तप करके गुरु नानक सचे पातशाह नूं रिझाया। सारी सारी रात बाबा जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा खड़े होके चवर करना। जदों एक वेरा संत जसवंत सिंह जी ने बाबा जी नूं आखिया, ए रब दे प्यारे आपा नाम जपण वल तुरे ता हां ते नित अरदास भी कर दे, हे निरंकार तेरे नाल साड़ी प्रीत है, पर जिवे महापुरखो तन्ने ने ठाकुर नू भोग लवाया सी कि साड़ी प्रीत भी ऐसी है बई श्री गुरु ग्रंथ साहिब परतख होके साड़ा भोग लाऊ। ते बाबा जी मुस्कुरा पे, आखन लगे जसवंत सिंह जी इस प्रसन्नता नू हासिल करन दे लई कालना भी अत दी कमाई करनी पेगी, बहुत कालना करनी पेगी। ते बाबा जसवंत सिंह जी कहन लगे, ए रब दे प्यारे हो दुनिया नू छड़िया घर बार त्यागया जंगलां विच आके समाधियां लाईयां, ते जेकर गुरु नानक दे दर्शन भी ना होए ता ए जन्म किस लेखे। ता बाबा जी ने आख्या, फिर आज तो ए प्रण कर लो कि जितना चिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब विचों तन गुरु नानक परतख आके भोग नहीं लगाउंदे असी भी उतना चिर प्रसाद नहीं छकना। बाबा जी ने अरदास कीती ते आख्या, जिवें लालो नेक दी कमाई करके लियाया सी ते गुरु नानक ने प्रसाद छकिया सी, असी भी अज तो जंगलां विचों लकड़ां कट के उन्हां नूं वेच के उस कमाई विचों प्रसाद तैयार करांगे, फिर गुरु नानक जरूर अंगीकार करेगा। साध संगत प्रसाद तैयार कीता रखिया, एक वेरा दो वेरा जदों भोग ना लग्या ता बाबा जी ने आख्या, असी भी उतना चिर नहीं छकना जितना चिर गुरु नानक आप नहीं भोग लाउणगे। बिलक दियां पईयां सन दो रूहां गुरु नानक दे दर्शन लई, ते तरला पा पा के कहने ने कदों आवोगे कदों आके प्रसाद भोग लावोगे। रोज जाउना लकड़ां कटनियां बाजार विच वेचनियां ते आके अरदास करनी। अज छे सत दिहाड़े हो गए जदों भोग नहीं लग्या, अरदास करदे करदे बाबा जी दा शरीर निढाल हो गया, क्योंकि छे सत दिहाड़ियां तो शरीर दे अंदर अन्न दा एक दाना भी नहीं सी गया। देखो किड़ी प्रीत सी बाबा जी दी। सर संगत बोलो श्री वाहिगुरु, एडी प्रीत पाई श्री गुरु ग्रंथ साहिब नाल, ते एक भी अन्न दा दाना अंदर ना गया ते शरीर निढाल होके गिर पिया। जदों गिर गए बाबा जी ता बाबा जसवंत सिंह जी नूं आखण लगे,
ਵੀ ਰਾਗਾ ਸਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਕੇ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੇ ਆ ਕੇ ਭੋਗ ਲਗਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਮ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਭੋਗ ਛਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰਾਗਾ ਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਤਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਰਾਗਾ ਸਿਆ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਰਾਗਾ ਸਿਆ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕੁਝ ਮੰਗ। ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਐ ਰਿੱਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿੱਕੀ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੰਗੋ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਮੰਗੋ ਬਈ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ

पर रब दे प्यारे ता रब नू ही मंग लेंदे ने। ता इस तरह बाबा जी ने पूरने पाए कि किवें सिख ने गुरु ग्रंथ साहिब नाल प्रीत पाउनी, किवें हाजिर नाजर समझ के भोग लगाउनी। आप क्या करदे सन जदों भी प्रसाद छकीए ता आखिए गुरु नानक तेरा दिता खारी, जदों भी पहनीए ता आखिए गुरु नानक तेरा दिता खादा पहन रहे हैं, तेरी बख्शी सदका सारियां खुशियां मान रही हैं। ता इस तरह बाबा जी ने कई पूरने पाए ते जो कोई भी आंदा उसनू यही कहंदे भई एक दा हो जा। बहुते दरवाजियां दा प्रौणा

माता बाबा जी ने सहस भाई आख्या बई तुहानू वड्डे कामियां नू कित्थों वेल लग गई सतसंग करन दी। आख्या बाबा जी की करिए कम ही ऐसा है, पहला काम खत्म कीता सी नवा शुरू करन लगे सा सोचिया दर्शन।

0: महाराज कहते हो की फड़ावा कहता जिहड़ा किता मेरे पिता पिता के पिता ते उसके पिता यानी जो साडा पुश्तैनी कारोबार है वह मेरे तो करवा लो। महाराज ने कहा की है तेरा पुश्तैनी किता ते दसदा है
1: नंगी कद कभी ना पकड़ी नंगी कद कभी ना पकड़ी चिड़ी उड़ी जल से मर जाए दुश्मन से कैसे लड़ पाए दुश्मन से कैसे लड़ पाए।
0: इतिहास ने ये वाक सुरक्षित रखे ने रिकॉर्ड में रखे ने संभाल के रखे हुए ने।